0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 6:08 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: दिस प्रोग्राम इज

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: FM 100
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
1: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: your location for maximum music.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम इज

0: आजी अपने बैंक से बनवाए।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाओ।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
4: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
4: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL. HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
2: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
2: दिस प्रोग्राम

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil jo hai aaram.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. दिस प्रोग्राम इज

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL
2: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account.
3: This program is

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: खवातीन हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7/365

जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: Us on facebook.com/fm247365
4: main dil di duniya chitte de baju

जो तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे सारा शहर शनासाई का।

दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है। वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ڈی اے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. रुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil jo hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

サーブ FM100 Like us on facebook.com slash FM247 365 FM247 365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज़ ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो उस पर हरगिज़ यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड न आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रातों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, ब्राह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप سے ویریفیکیشن یا ایک 6 حصوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے لیکن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: FM 247 365 FM 247 365

वेलकम बैक। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। खाने पीने की बात हो रही है तो पीने, खाना तो खाया जाता है, पिया क्या जाता है भाई, पानी पिया जाता है और पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पानी की खुशबू भी होती है या नहीं होती है ये तो बताइएगा, सवाल है आज का। ये पानी जो है उसकी खुशबू होती है या नहीं होती, अच्छा अगर नहीं भी होती, होती भी है चले समझ लीजिए होती है, तो आप ये बताइए कि वो कौन सा जानदार है जो पानी की, पानी के होने को उसको इल्हाम हो जाता है या वो सूंघ लेता है पानी को, चाहे उससे 20 मील दूर हो, 20 मील 20 माइल या किलोमीटर कह लें। एक ऐसा जानदार है जो पानी को 20 मील की दूरी से सूंघ लेता है, बताएं वो कौन सा, ये सवाल है आज का। हाय वैसे तो कुछ खाने पकाने के हवाले से होना चाहिए था मगर हमने ये वाला सवाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, सबसे पहले फीता काटा है हमारे आसिफ अली क्लिफ्टन वाले ने। कैसे हो आसिफ, कह रहे हैं सुनियो आपको और तमाम लिसनर्स को सलाम। सर कैसे मिजाज है, ओके ठीक यार। कोई भी अच्छा सा सॉन्ग तमाम लिसनर्स को डेडिकेट कर दीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, आपकी जानिब से करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। मुश्क आ गई जनाब, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हैंडसम, आज का दिन बड़ी होने वाला है, बिजी होने वाला है। अच्छा बड़ी मैं पढ़ रहा हूँ भाई, करीब कर लें इसको। आज का दिन बिजी होने वाला है, फैमिली के साथ नाश्ता, एक बॉयल अंडा लिया है बस। आप कैसे हैं, आपके शो की फैमिली मेंबर्स को आदाब, ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती, तैयारी में हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या क्या पक रहा है किसी ने पूछा इतने पुरसुकून कैसे बैठे हो, मैंने कहा जिन बातों का डर था वो सब हो चुकी है। पहला सॉन्ग भी पसंद आया मुझको, थैंक यू वेरी मच। नौरीन बहना आ गई हैं जनाब फैसलाबाद से और कहती हैं, क्या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नरीन भाई, आपको और आपके खूबसूरत शो में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, दुआ है कि आपका ये शो खुशियों मोहब्बतों और खूबसूरत बातों से सजा रहे, आपकी आवाज सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरती रहे, तमाम सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत सलामती खुशियां रिस्क में बरकत और जिंदगी में आसानी अता फरमाए, हर परेशानी दूर करे और सबके दामन खुशियों से भर दे, आमीन सुमा आमीन। इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी है मेरी बहन, क्या बात है सबके लिए। और कहती है हाय क्या शख्स था जिसने ये कयामत कर दी, रात भर जागते रहना मेरी आदत कर दी, वाह वाह वाह वाह, शायरी भी हो रही है भाई, नाल और नाल। हाँ जी हाँ जी, चले इसी बात पर हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं आसिफ अली की जानिब से तमाम लिसनर्स को।

0: वेलकम बैक कहेंगे जनाब आप सबको. सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है. आसिफ कह रहे हैं सर मैं तो संडे को संडे वाले दिन सुबह 5 बजे उठकर मैच खेलने चला जाता हूँ और वापस आकर चावल की रोटी सालन और चाय के साथ नाश्ता करता हूँ. क्या बात है भाई. ओके ठीक भाई. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 बजे नहीं उठते. ज्यादातर लोग जो हैं वो लेट उठते हैं. और थैंक यू भी कहा है उन्होंने सॉन्ग के हवाले से. आज तो भाई दूल्हे मियां आ गए हैं. अब तो दिन करीब आ रहे हैं. समी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दादी भाई कैसे हैं आप सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी तैयारियां चल रही हैं शादी वादी की. बीच बीच में आ रहे हो तो बताओ तो सही कम अज कम. सलीम मेमन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मीठे के हवाले से. हैं भाई. और आज पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे सलीम मेमन साहब. खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. सभी भी आ गए हैं. तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है. वालेकुम अस्सलाम. वाह भाई वाह जवाब दे दिया है हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने. और कहती है कि एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने में जाकर थाने वाले ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रख दी तो गधा घास खा गया और नस्वार छोड़ दिया थानेदार पठान से. गुलखान इससे क्या सबक हासिल है आपकी आपने. पठान बोला जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है. भाई वाह वाह वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत आला. और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं. कहते हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब. इनका मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे जाएंगे एक ब्रेक की जाने.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है.

कहेंगे जनाब फौरन से बेशतर हम हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब के मैसेज की जानिब चलते हैं। और कहते हैं कि वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप मुझ बंदा नाजीज की फरमाइश पर मेरे पसंदीदा गुलगार सज्जाद अली अनुजान की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी हो। पेज की शुक्रिया अदा किया है अयूब आफरीदी और समी शेख, नसीम कुरैशी, इरफान मेमन, किताबुल लाला, इमरान रियाज और आपके इंतहाई वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआ को नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब, एफबी रिया कराची। मैसेजेस कर सकते हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे 36361। अच्छा भाई, हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब के मैसेज के बाद हम चलते हैं एक ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है अलीमुद्दीन साहब की जानिब से आप सबको डेडिकेट करेंगे। एलो फड़ो

वेलकम बैक, क्या समा है, तू कहाँ है? समी एक सलाम दुआ का मैसेज करके गायब हो गए, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अरे भाई बड़े बड़े लोग आ गए, संजू आ गई, यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं रब्बे ताला की मेहरबानी के साथ रहें, आमीन इलाही आमीन। खुश आमदीद। नाश्ता नहीं किया, दिल नहीं चाह रहा। अरे ये क्या बात हुई, अरे मसाले की चिकन चबाती है, ओए होए क्या बात है, खाइए ना। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं नाश्ते में उनको ये चीजें नहीं पसंद होती, बस भाई स्लाइस हो, चाहे उस पर मक्खन लगाओ या अंडे के साथ, वो चाहे वो होगा तो नाश्ता होगा वरना नहीं होगा। लेकिन आप नाश्ता कर लीजिए संजू, अपनी पसंद का कर लीजिए, चाय का एक कप पी लीजिए। मेरी बहुत ही काबिले एहतराम नौरीन बहना, प्यारी शहजादी जरीन नूर के लिए ढेरों दुआएं प्यार कह दें, इख्तिताम तक साथ हूं, क्या बात है। और कहती हैं उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। यहां सभी इंतजार कर रहे होते हैं आपका, मगर आप हैं कि यानी कि समझ रही है ना, ऐसे गायब होती हैं बीच में, लेकिन खैर काम वगैरह होते हैं। तो बात अच्छी की आपने बहुत। और नौरीन बहना कहती हैं फैसलाबाद में रात से बारिश हो रही है, क्या बात है सुने हो नदीम भाई, मौसम बड़ा सुहाना हो गया, कोई अच्छा जहा खूबसूरत सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा मेरी रूहे मन रूहे जान को। ओके टेक कर देंगे जनाब, मगर अभी ये थोड़ी देर पहले मैसेज पढ़ा था ना, क्या समा है तू कहाँ है, ये वाला गाना करता मैं डेडिकेट, अच्छा था ना, बैठता इस बात पर। लेकिन फिर भी हम ओके टेक किस्म का गाना डेडिकेट कर देंगे, डोंट वरी। और जनाब जनाब जनाब सलाम, कैसे हैं? और वाले साहब तमाम सुनने वालों को और खसूसी तौर पर संजू को सलाम, कहा है हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई। अस्सलामुअलैकुम नरीम भाई, यूसुफ भाई, पापोच, तमाम सुनने वालों को सलाम, कहा है एफएम 100 की तमाम फैमिली को भी, आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानो, तमाम डॉक्टर इमरान भाई, खिताब उल्लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को सलाम, कहा है वालेकुम अस्सलाम। शेख इमरान साहब आ गए हैं और आदाब अर्ज कर रहे हैं, तस्लीमात जनाब। नदीम भाई सॉन्ग प्ले यहां वहां। शेख इमरान साहब सबसे पहले ये फरमाइए कि आपका फर्स्ट टाइम मैसेज है या इससे पहले आप शो में शिरकत कर चुके हैं, ये जरूर बताइएगा हमको, फिर हम गाने पर जो है सोचो विचार करेंगे। अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई, बस कुछ मसले हैं। समीर शेख कह रहे हैं शादी में तो मसले होते ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी कि समझ रहे ना, और अल्लाह ताला ये बेड़े पार भी लगा देता है, डोंट वरी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और कह रहे हैं अगर आपकी पसंद का एक सॉन्ग हो जाए, समीर बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो चलो इसी बात पर हम समी को एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं, एलो फड़ो, चल जा भाई, क्या हो गया।

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: पापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

वेलकम बैक रहेंगे सुनियो आप सबको, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बताते हैं जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और 3 बजे तक ये अल्लाह गुल्ला जारी हो सारी है। बातें हम इधर उधर की भी कर रहे हैं, एक सवाल भी फ्लोट किया हुआ है कि भाई बताएं वो कौन सा जानदार है जो पानी को दूर से सूंघ लेता है, काफी दूर से सूंघ लेता है। वैसे तो मैंने किलोमीटर के हवाले से कहा था, लेकिन नौरीन बहना ने एक बात ऐसी की है कि मैं भी सोच विचार में पड़ गया हूं, और वो ये है कि साइंसी तौर पर ये अभी कंफर्मेशन नहीं है इसकी, तो लिहाजा किलोमीटर को हम साइड पर कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत दूर से जो है पानी को सूंघ लेता है, और इसके साथ साथ जो भी जवाब इसका दे वो ये भी बताए कि पानी की खुशबू होती है क्या कि अब पानी को सूंघ लिया जाए। ये सवाल तो हो गया, जवाब भी देना हमने, ये मैंने ऐवें ही अपनी तरफ से पूछा है। और जनाब नौरीन मैंने कहती है मैं भी सुबह अपने कहवा जात पीने के बाद ब्रेकफास्ट बॉयल एक एग और चाय पी रही हूं। क्या बात है यार, एग एग एग से मुराद यानी कि पानी। हा हा पानी पानी पानी पानी पानी। पानी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, और अंडे के हवाले से भी आ रहे हैं एग। लेकिन इस तरह तो होता है जनाब, इस तरह के कामों में हम साथ ही साथ कुछ तलाश भी जारी रखी हुई है गानों वानों की। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम कम बोल रहे हैं, बीच में म्यूजिक भी आ रहा है। हाँ जी, तो नौरीन बहना की मैसेज के बाद आगे बढ़ते हैं। संजू कह रही हैं बहुत गुड, कह रही चाय पी रही हूँ मजे वाली, आप पियेंगे? जी बिल्कुल पियेंगे, अच्छी बनाती हूँ चाय, तो वक्का पिला रही है चाय। शो के बाद खाना खाऊंगी जब तक भूख लग जाएगी, क्या बात है। और कहती है तुम्हारे साथ खामोश रहना भी मोहब्बत लगता है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही दिल को सुकून देती है। वाह वाह क्या बात है। और प्यारी नौरीन बहना और शहजादी जरीन नूर का दिल से शुक्रन हमेशा याद करती हैं। और अदीला बलोचिस्तान 15 दिन से हैं, कल बात भी हुई थी, सलाम भी कहा था। मैं भी सोच रहा था कि अदीला मेरी प्यारी सी बहन के मैसेजेस नहीं आए। और कहती हैं कि आपने क्या नाश्ता किया? जी बिल्कुल नहीं किया, मेरे तमाम लिसनर्स को पता है। नदीम मेरी तरफ से प्यारी नौरीन बहना और जरीन नूर का बस शुक्रिया अदा करें, कुछ दोस्त जिंदगी बनकर आते हैं, खुशी कीता रहा। वैसे एक बात तो बताएं संजू, जब भी जरीन आती हैं, जरीन नूर आपको ट्रैक डेडिकेट करती हैं, नौरीन बहना आती हैं अपनी रूह जां को ट्रैक डेडिकेट करती हैं, आप क्यों नहीं करती इन दोनों को? कभी कभी करती हैं खुशबू की तरह। वाह वाह वाह वाह, कुछ दोस्त जिंदगी बनकर आते हैं खुशबू की तरह। तो इसी बात पर हम लेकर चलते हैं आपको एक अदद ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जनाब जरीन नूर सॉरी नौरीन तौसीफ की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं उनकी रूहे जहां को। कहां गया गाना, ये रहा।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको तेरी सांसों में बस गए हम। ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं और क्या है भाई कहाँ गया मैसेज। ये रहा शेख इमरान कहते हैं नदीम भाई आपसे पहले भी फरमाइश की थी खुश रहें रोमांटिक रहें और आपने जो गाने की फरमाइश की है शेख इमरान साहब जरूर चलेगी यार डोंट वरी। मैंने नौरीन कहती हैं हाँ नजीम भाई ये बात आपने बहुत पते की है रूहे जहां की तरफ से मुझे इंतजार है सॉन्ग डेडिकेशन का और शुक्रन उन्होंने कहा है और सॉन्ग उनको बहुत अच्छा लगा लाजवाब लगा। समी शेख साहब का मैसेज आ गया यार क्या कहां खोए हुए वो समी इतनी देर बार थैंक यू गाना कब का चलाया हुआ है हमने आपके लिए सब खैरियत है ना शहजादे कोई धमाकेदार किस्म का गाना भाई धमाकेदार वाला ही गाना चलाया था समी सुना था आपने या नहीं सुना था पहले ये बताइएगा। और कहती हैं कि चले आज आपकी तरफ से रूहे मन की तरफ से आपकी जबरदस्त गिफ्ट शीट का सॉन्ग उनके लिए कर दें मुझे तो इश्क है समर जाफरी और कजलबाज से आपकी वजह से उनके बेहतरीन सॉन्ग मिले हैं जरा नवाजी आप और लिख लें कि ना इन प्यारी दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है आप पक्का वाला भूल जाते हैं सलीम भैया बादाम लाए होंगे नहीं वो नहीं यार और गाना इनको भी पसंद आया तो भाई हम जरूर डेडिकेट करेंगे वैसे मैं ये कहे बगैर भी आपकी जानिब से डेडिकेट कर सकता था मगर आई मीन यू नो हंसी मजाक थोड़ा सा अच्छा कह रहे हैं समी के मैंने सुना था गाना भाई लव यू नदीम भाई वो भी तो धमाकेदार किस्म का ही गाना था कौन सा था यार वो मुझे याद आ गया वो

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपक है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपक है
4: स्टोर ऑनलाइन एनी टीम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है. वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
7: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
8: हमारी जिम्मेदारी है. खानदानी منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 100
9: 31 سال FM

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, आंखों के सागर होठों के सागर ले डूबे हमें ब्यूटीफुल ट्रैक है ना। हो कि आप सबको पसंद आया होगा, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दूं जरा, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोनियो, हैप्पी आवर्स में हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। संडे का दिन है जनाब, इस हवाले से सवाल तो खैर मैंने एक फ्लूट किया हुआ है पानी के हवाले से कि कौन सा जानदार है जो पानी की मौजूदगी को मीलों दूर से पता उसको चल जाता है वो कौन सा जानदार है, ये पूछा है। और इतवार के हवाले से भी हम बातें कर रहे हैं, नाश्ते वाश्ते की बातें हो रही है। और जो जो इस वक्त मेरे लिसनर जो है एक्टिव है फुल टाइम वो बता भी रहे हैं। और इमरान भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी पसंद का गाना जरूर चलेगा। इतवार वैसे नाम किस चीज का है, संडे किस चीज का नाम है, दिन का नाम है, आप ये सोच रहा हूं, बट ये एक सुकून का नाम भी है। छुट्टी का दिन होता है तो आदमी सुकून में होता है, जिंदगी की जो भाग दौड़ है वो एक दिन के लिए रुक जाती है, क्योंकि सुकून भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जरूरत है, सुकून जिंदगी में रहना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे घर पे बैठकर कौन सुकून में रहता, प्याज ले आओ, नाश्ता ले आओ, रोटियां ले आओ, ये कर दो वो कर दो, ये भी है अपनी जगह, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब होते हैं और जिंदगी की जो भाग दौड़ होती है, दिमागी जहनी स्ट्रेस जो होता है उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है और खुश रहते हैं। वैसे खुश रहना भी एक फन है, आपको पता है, आप कह रहे हैं ना खुश तो इंसान जब दिल खुश होता है तब खुश होता है, नहीं ये भी एक फन है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि खुशी उस चीज से मिलती है कि आप जिंदगी में कामयाबियां हासिल करें तो खुशियां मिलती रहती है, लेकिन कभी कभी एक कप चाय का जो होता है ना, हाय हाय हाय, अपनों की मुस्कुराहट है ना जो, हाय अल्लाह जी, और दोस्तों की आवाज जो है वो भी कभी कभी हमें बहुत खुशी दे देती है, ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। और इसी तरह ये हमारे रिश्ते जो होते हैं, प्यारे प्यारे से रिश्ते, इनकी भी हमें कदर करनी चाहिए, लेकिन इसमें बेकदरी जो है वो बहुत फैल चुकी है, लेकिन इनकी कदर करनी चाहिए। मसरूफ जिंदगी में अपने प्यारों को वक्त देना चाहिए, क्योंकि हर कोई मसरूफ हुआ है, जिसको देखो मसरूफ है, चचा मसरूफ है, ताया मसरूफ है, छोटे चचा मसरूफ है, लेकिन इस मसरूफियत में से वक्त निकाल कर, अब ये संडे का वक्त जो होता है ये सुकून वाला होता है, ध्यान में रखिएगा, जोड़ रहा हूं तमाम बातों को, इसमें जो आपके रिश्ते हैं अपने, जो आपके प्यारे हैं, उनको भूले मत यार, सोए मत रहे, चलो यार जाकर नाश्ता कर लिया उनके साथ, या उनको बुला लिया नाश्ते के लिए, खाने पर हो गया, खाना हो गया, जो घर में पका हुआ है वही, ये नहीं क्योंकि स्पेशल दावत हो रही है, क्योंकि इससे मोहब्बत भरी यादें जो है ना वो जन्म लेती हैं, जो आपको जिंदगी भर याद रहती हैं। तो खैर जी, रिश्तों की कदर करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं रिश्तों की कदर के हवाले से, ये जरूर मुझे बताइएगा। चंद मैसेजेस आपके और शामिल कर लेते हैं, और फिर इमरान भाई जो हैं हमारे शेख साहब, इमरान शेख साहब, शेख इमरान साहब, उनकी हम फरमाइश की जानिब जाएंगे। शुक्रिया रुहिजान, दिन अच्छा गुजरेगा आज इंशाल्लाह। और आपकी रुहिजान क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आपके मिजाज के खिलाफ एक मासूम सी ख्वाहिश है, अगर मुमकिन हो तो रूहेमन के नाम क्यूशीट से दिल छूता सॉन्ग डेडिकेट कर दें, क्योंकि आज की प्लेलिस्ट बहुत ही दिल छूती है, सॉफ्ट सोलो सॉन्ग्स थायला जी, अपनी मर्जी से जो चला रहा हूं अभी एक गाना चलेगा किसी की मर्जी का, वो जो एक बार कहे मुझसे मोहब्बत है उसे, जिंदगी तुझसे कोई और तकाजा ना करूं,
आज सिर्फ आज के दिन की रिक्वेस्ट है। अरे आप हमेशा रिक्वेस्ट करें, हमने मना थोड़ी किया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है या टैक्स से कोई इस पर। खुश रहना भी एक फन है, ये कोई मुझसे पूछे, सब दर्द दुख को छुपा कर खुश रहना भी वाकई फन है। वाह वाह वाह वाह वाह, ये बात बहुत अच्छी की आपने। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल शेख इमरान साहब की फरमाइश की जानिब हम नहीं बढ़ सकते अभी, उसकी वजह है बड़ी बाबा ब्रेक आने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक से डेढ़ मिनट में। तो एक से डेढ़ मिनट हम और चर्चा कर लेते हैं, क्या हर्ज है और चर्चा करने की। तो जैसे कि संजू ने एक बात कही कि खुश रहना भी एक फन है, ये कोई मुझसे पूछे, हाय अल्लाह जी, ये वाकई में कोई किसी से पूछे तो वो जाने कि खुश रहने के लिए कुछ जबरदस्ती खुश, लेकिन मैं जबरदस्ती खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुख दर्द जो है छुपा कर खुश रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, दिल से खुश होने की बात कर रहा हूँ। हमें हर दिन जो है ना वो एक नया मौका देता है, आपको पता है ये बात। वो मौका क्या देता है कि अगर हमारा गुजरा हुआ दिन या गुजरा हुआ हफ्ता वो मुश्किल से गुजरा है, मायूसी में गुजरा है, तो आने वाले दिन की जो उम्मीदें हैं ना, नए इम्कानात लाकर जो है हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है हमें, ये इम्तिहान होते हैं जिंदगी। तो ये मौके को, इसको मौका समझें, आने वाले दिन को, हफ्ते को, उसके हिसाब से चलें, यानी के समझ रहे हैं ना आप। खैर मैं आज ऐमी चर्चा करना भी साथ ही साथ शुरू कर दिया, तो चलें आपको लेकर चलते हैं एक छोटी सी ननी ननी सी ब्रेक की जानिब, और उस ब्रेक के बाद हमारे प्यारे से शेख इमरान साहब ने एक फरमाइश की है, अली अजमत साहब की आवाज, तो वो हम शामिल करेंगे। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक।

0: 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
5: facebook.com/fm247365
6: fm247365

वेलकम बैक कहेंगे यहाँ वहाँ ढूंढू निशान तू है कहाँ। अली अजमत का नया ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और ये अल्लाह गुला जारी हो। सर ये एक सवाल किया था मैंने और सवाल का जवाब मैं फौरन दे रहा हूँ क्योंकि चर्चा कुछ और भी हो रही है। साथ ही साथ ये मैंने सवाल किया था कि आपने ये बताना है कि वो कौन सा जानदार है जो कि पानी का एहसास उसको बहुत दूर से हो जाता है। तो नौरीन बहना ने भी इस हवाले से जवाब दिया है। सबके जहन में अगर बहुत ज्यादा जहन पर जोर लगाएं तो ऊंट आ जाता है कि ऊंट एक ऐसा जानदार है, लेकिन ऊंट जो है वो पानी स्टोर करने में माहिर है, पानी कहाँ मौजूद है इसका एहसास का नहीं है। इस हवाले से सिर्फ एक ही है ऐसा जानदार जो बाकी जानदारों की बनिस्बत जल्दी उसको एहसास हो जाता है कि पानी आसपास है कहीं कहीं, और वो है हाथी। हैं जी, जी हैं जी। तो बात हो रही थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। संडे के हवाले से बात हो रही है, खुशी के हवाले से बात हो रही है, मिलने जुलने के हवाले से बात हो रही है, खाने पीने के हवाले से बात हो रही है। तो नौरीन मैंने कहती है, नदीम भाई रिश्तों को निभाने के लिए मैंने हमेशा पहल की, दिल साफ करने के लिए खुद चल कर गई क्योंकि मेरे दिल में कोई मैल नहीं था, लेकिन जब रिश्तेदार खुद ही फासला रखना चाहें तो मैं भी जबरदस्ती रिश्ते नहीं निभा सकती। मेरी तरफ से आज भी दिल साफ है, अब आगे बढ़ना या फासले रखना उनकी अपनी मर्जी है। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात की है आपने, इसी बात की जानिब मैं आ रहा था। और इस हवाले से मैं यही कहूंगा कि बेशक अपनी जानिब से हमें ये रिश्ते निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सामने वाला मतलब अपने दरवाजे खुले रखो और बार बार जाकर दरवाजा खटखटाना भी नहीं चाहिए सामने वाले का। एक बार अगर किसी ने आपके लिए दर बंद कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, चार बार कर दिया, तो बस हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अपना दिल साफ रखिए, वो रब्बे ताला की जाते पाक तो जानती है कि आपकी नीयत क्या है, और फिर इंतजार करिए उनके लिए दरवाजे खुले रहें। लेकिन होता क्या है कि बहुत से ऐसे लोग जब उनको एहसास हो जाता है इस बात का कि यार इसने कई दफा मेरा दर खटखटाया लेकिन मैं ही नहीं मिला, रिश्ते निभाने के हवाले से बात हो रही है, तो जब उसको इस चीज का एहसास हो जाता है तो फिर शर्मिंदगी उसको आपके दरवाजे तक आने नहीं देती। यानी कि समझ रहे हैं ना आप? हाँ। तो जब आपको ये एहसास हो कि सामने वाला इंसान अब शर्मिंदा है मगर वो शर्मिंदगी की बिना पर नहीं आ पा रहा, तो फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। यानी कि समझ रहे हैं ना आप? और इस हवाले से मैं एक मिसाल भी दूंगा कि जिंदगी जो है खूबसूरत तब नहीं होती है जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो, बल्कि जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम नामुकम्मल हालात में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। हैं जी, जी हैं जी। और जनाब अब हम आपको लेकर चलते हैं, नहीं नहीं नहीं एक मैसेज और हो जाए भाई, आ गए हैं काफी लोग, आ गए गयास भाई हमारे आगे मुल्तान तू। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और सब सुनने वालों को। सवाल का जवाब इन्होंने ऊंट दे दिया, हालांकि मैंने जवाब भी दे दिया। गयास भाई सही जा रहे हैं आप, अब तो मौसम भी वहां पर अच्छा हो गया मुल्तान में, वरना तो आदमी कह सकता है ना सर पे गर्मी पड़ गई। शहजादे कैसे हो, ठीक ठाक हो? इनामुल हक साहब भी आ गए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई जान, कैसे हैं आप? आंटी को, चाची को, संजीदा को, समी भाई को, सलीम भाई को और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। संजू कहती हैं कि दूसरों को माफ कर दें, इसलिए नहीं कि वो माफी के मुस्तहक हैं बल्कि इसलिए कि आप ज़हनी सुकून के मुस्तहक हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। अरे हाँ वाकई में जरूरी नहीं उदासी का सबब बताया जाए, ये हमारा मामला है। नौरीन बहना और आपकी रिप्लाई से मुत्तफिक हूँ, सारी बात तरबियत की होती है, झुकना कमजोरी नहीं है। बेशक माफी मांगना या झुकना ये कमजोरी में नहीं आता, ये इंसान को के रुतबे को बढ़ा देता है।
तो जनाब हम अब चलते हैं गाने की जानिब। हाँ जा सकते हैं भाई, जा सकते हैं, देखते हैं कि गाना कोई छोटा वाला मिल जाए।

अभी जनाब हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं नौरीन भैना को, उनकी रूह जान की तरफ से, यानी कि संजू की जानिब से नौरीन के लिए ट्रैक एलो फड़ो।

0: पेपा कार्ड है?
1: है तो फायदा है,
2: पेपॉक है
0: तो ऐड टू कार्ट है,
2: पेपॉक है
3: स्टोर ऑनलाइन एनी टीम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे. FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365.

वेलकम बैक है, ये सुने हो आप सबको। और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें कि मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो ये सुने। हैवी आवर्स में है वो आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और ये अल्लाह गुला जारी सारी है। मैसेजेस आपके सामने मौजूद, आउटस्टैंडिंग शो। और नदीम भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये कह रहे हैं शेख इमरान साहब। और सलाम सुनो, आज आए हाय किसी के इंतकाल हो गया है इसलिए मैं आज शो नहीं सुन सका। ये हमारे सलीम मेमन साहब है और अपने वादे पर वो कायम है। सलीम भाई, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत अपनी जगह, जाहिर है इंसान के साथ कुछ न कुछ होता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जीते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके लिए। और आपको ये जो आपने एक सानिया सुनाया है, इस पर मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। हैं जी, ते हैं जी। नौरीन बहना का मैसेज आया है, कह रही है रूहे जान इतना खूबसूरत मेहंदी का गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, गाना वाकई बहुत प्यारा है, मगर जब से तौसीफ की डेथ हुई है मैंने मेहंदी लगाना ही छोड़ दी है। इतने फंक्शन आए मगर आज तक मेहंदी नहीं लगाई। कुछ यादें और एहसास ऐसे होते हैं जो इंसान की खुशियों को भी बदल देते हैं। आपका गाना बहुत खूबसूरत है, दिल को छू गया, शुक्रिया। भाई का शुक्रिया नहीं अदा करना है भाई। कहती है संजू के रिश्तेदारों से मिलना जिंदगी है और ये रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते, बस वक्ती मसरूफियत की वजह से मिलना ना पैदा हो जाता है। कुछ रिश्तेदार खोजी होते हैं और कुछ दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं। क्या आपकी मैं क्या चल रहा है, ऐसे सों से दूरी बेहतर है। अच्छा, पंजाबी सॉन्ग ज्यादा समझ नहीं पाई, कुछ अल्फाज समझ आ गए। नौरीन महना, बहुत सा प्यार, आप समझकर मुझे बताइएगा। शुक्र नदीम, मैंने इसीलिए ये चलाया कि आपकी समझ ना भी आए तो नौरीन बहनों को समझ में आ जाएगा। अब कह रही है बेजार ना हो जाए इतने कमेंट्स पढ़ के, अपना बहुत ख्याल रखिएगा साथ में। अच्छा, सॉन्ग पर चर्चा समेत, क्या बात है क्या बात है, मैं कब होता हूँ। तमाम कमेंट्स जो हैं वो शामिल शो होते रहते हैं। और संडे के हवाले से बात हो रही है जनाब, खाने पीने के हवाले से भी हो रही है। बात कहां से कहां पहुंच गई, मिलने मिलाने के हवाले से जब बात की जाने मैं गामजन हुआ, जिस बात की जाने गामजन हुआ तो रिश्तेदार भी याद आ गए, दोस्त अहबाब भी याद आ गए। आप अभी एक काम कीजिएगा, आज आप सब जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर कीजिएगा, जिनके पास स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप जिनके पास मौजूद है, उन सबसे एक काम कह रहा हूं मैं, और वो ये काम है कि अपने व्हाट्सएप पे जाइए और शो के बाद जाइएगा और बिल्कुल आखिर में जाइए, बिल्कुल दी एंड में जाइएगा, शुरू के जो मैसेजेस हैं उनको छोड़कर जो आखिरी नाम लिखा हुआ है व्हाट्सएप पर, बिल्कुल एंड से आप ऊपर जाना शुरू कीजिए और देखते जाइए कि किस किस के नंबर और किस किस की तस्वीर आपके सामने आ रही है। उनमें से कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा नाम आपके सामने जो आए, जो अचानक दिल पर लगे, अरे यार इतना अरसा हो गया यार, इसके साथ तो सलाम दुआई नहीं किया, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई भी है, उसको मैसेज कीजिए, हो सके तो कॉल कर दीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अगर ऐसा आपने किया, मेरे तमाम सुनने वालों में से किसी ने भी, तो मुझे अगले शो में बताइएगा जरूर कि आपने क्या महसूस किया, क्या फीलिंग आई आपकी। इसी बात पर जनाब एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये भी संजू के लिए है, उनकी प्यारी सी जरीन नूर की जानिब से।

0: 경제.
1: 웰컴 back 가영기. 그룹에 글라웃 가나 절기한테 또 없니 세이 바야 가냐 잘라지. 사마리 아프리카 가나다 자라자라. Beautiful track and I hope 게 아프고 무슨 나영행. मैसेजेस आप क्या रहे हैं कि स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर. समी साहब कहाँ गायब हो गए आप फिर गुम गए और गयास मेरे शहजादे ये तो गलत गाल है ना सिंह गलत गाल है सिंह कहाँ गायब हो गए हैं आप आ जाइए फौरन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए. और कहती हैं संजू के मेरे व्हाट्सएप पे नदीम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे राबता है सब रिश्तेदार दोस्त से सिवाय एक के जिसकी मैंने दूध देने वाली बकरी चुराई थी चुराई है वो भी ढीठ मैं भी ढीठ थोड़ी सी पहल भी करती हूँ मगर उनको मुझे झुकाकर सुकून मिलता है. अच्छा अब आप ये जो कह रही है ना कि सभी से आप व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टेक्ट में ये आप अपने जहन से कह रही हैं जरूर जाइएगा कॉन्टेक्ट होने के बावजूद और देखिएगा जरूर नाम जितने भी आ रहे हैं सुकून के साथ आराम के साथ कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जरूरी नहीं वो दोस्त हो रिश्तेदार हो तो पुराना जानने वाला हो. और कहने को तो कहने को उससे इश्क की तफसीर से तफसीर है बहुत पढ़ ले तो सिर्फ आंख की तहरीर है बहुत बैठा रहा वो पास तो मैं सोचती रही खामोशियों की अपनी भी तासीर है बहुत. वाह हाय हाय किसी बात से दिल की दिल आजारी हुई हो तो यानी कि समझ रहे ना. अरे सारा खानजादा आ गई है और कह रही है अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं और बस अभी तो फिलहाल सलाम आया है इनकी जानिब से. अभी हम जा रहे हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर आपको गाना सुनाएंगे एक अच्छा सा.
2: FM 24/7 365.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो ते जरा गाना ते सुनो कैसा लगेगा. चल जा भाई चल गया

0: वेलकम बैक सुनियो जीना मेरा ब्यूटीफुल ट्रैक है और ये बेसिकली पाकिस्तानी एक बैंड है उसका ट्रैक है पुराना वो रीमेक हुआ है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होए और मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है कि सारा ने भेजा है वो आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए वरना ये उम्र भर का सफर राय गा तो है वाह वाह वाह वाह वाह सभी कह रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ डोंट वरी अलबत्ता कुछ काम है जो कि नालो नाल हो रहे हैं बड़ी अच्छी बात है जनाब काम होने चाहिए जरीन नूर ने कहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाना बहुत अच्छा था भाई समर जाफरी पसंद है ना उसका गाना था वो जरा जरा
1: जरा जरा ना रा रा रा
0: गयाज भाई ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है नौरीन बहने कह रही हैं आज की सारी प्लेलिस्ट कमाल और लाजवाब बहुत बहुत शुक्रिया चले इसी बात पर हम आपको एक और गाना सुनाते हैं और वो 100% नौरीन महना को तो पसंद आएगा ही आएगा एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे। सुने अब वक्त जो है वो पर करके उड़ गया है। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल स्लीपलेस नहीं म्यूजिक ट्विस्टर में रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला मुलाकात अब कल ही। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी पसंद आएगा। बस समझ लीजिए कि मेरी जानिब से आप सबके लिए अल्लाह हाफिज़।

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Ya Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
5: Assalamu alaikum, Pakistan.
6: 1, 2, 1, 2, 3, hit it.
7: Everybody says,
8: Masti karne ka.
7: Everybody say joy. Come into my world.
9: Come and join it.
8: So listen to Music Masti.
10: Music Masti.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi. आपका प्रेजेंटर महफूज हसन आपके साथ, और मैं नहीं कहता, कहते हैं आपके जब आते हैं महफूज तो 100% होते हैं आप महजूज, और ये आप नहीं कहते बल्कि कहता हूँ मैं कि तुसी तो बड़े ही सोने हो। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेताबी, बेचैनी, बेसब्री, बेकरारी से इंतजार, और आपके बेकरार मन को आता है करार जब आता है इतवार, जिसे हम कहते हैं संडे, और मिल के मनाते हैं फंडे। तो संडे और फंडे आन पहुंचा है, हमारा आपका प्रोग्राम आन पहुंचा है जिसका हम सब मिलकर नाम लेते हैं, एंड द प्रोग्राम नेम इज म्यूजिक मस्ती और महफूज। म्यूजिक मस्ती और महफूज में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अब से लेकर ठीक 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार आप सबने बनाना है, अपने मैसेजेस के जरिए बनाना है, फेसबुक के जरिए बनाना है, और फरमाइश करके बनाना है। पुराने दोस्त हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि हमारा पहला आर होता है तेज गानों का और दूसरा आर होता है सॉफ्ट मेलोडीज का। तो अभी फरमाइश करेंगे आप तेज गानों की। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, facebook.com/RJ महफूज, या फिर आप सर्च कीजिए फेसबुक पे जाके RJ महफूज, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, पिक्चर स्टेटस लगा है, आइए और बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का पहला तेज गाना सिर्फ आपके लिए। सुनिए और वापस आइए।

0: musty. Music musty.
1: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं महफूज. आप हमें सुन रहे हैं 100 की फ्रीक्वेंसी पे, यानी रेडियो सच पे आपने FM 100 ट्यून किया और आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, जबरदस्त से गाने सुन रहे हैं. दोस्तों, रेडियो का अपना ही सीन होता है, अपना ही मजा होता है. वो हल्की सी खरखर, बीच में आरजे की आवाज, अचानक कोई पुराना मेहंदी हसन नूर जहां का गाना लग जाए और बस मूड बन जाए. इसमें ना स्किप की टेंशन है, ना एल्गोरिदम है. जो लग रहा है वही सुनो. गाड़ी में हो, चाहे चाय पी रहे हो, या रात को लाइट ऑफ करके हेडफोन्स पे आप सुन रहे हो, FM 100 पाकिस्तान का अपना ही मजा है. दोस्तों, टीवी देखते हुए और मोबाइल देखते हुए आपकी आंखें थक जाती हैं. ये दोनों चीजें आपकी आंखें थका देती हैं, लेकिन रेडियो सिर्फ कानों से दिल तक जाता है. और मुझे लगता है रेडियो का असल जादू तीन चीजों में है. एक तो आवाज का जादू है. चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ आवाज. इसलिए आरजे से एक अलग ही रिश्ता बन जाता है. लगता है जैसे अपना कोई दोस्त बात कर रहा हो. इंतजार का मजा, जैसे पहले होता था फरमाइश करने के लिए, कॉल मिलाना, घंटों वेट करना, अपना नाम आ गया तो खुश हो जाना और अपना गाना लगे तो उछल जाना. ये मजा अपना ही मजा. इसके बाद ख्यालों की दुनिया. रेडियो सुनते हुए आप जो सोचते हैं वही सीन होता है. गाना सुन के अपनी ही कोई याद, कोई कहानी जहन में चल पड़ती है, उसका अपना मजा होता है. रात को FM 100 पाकिस्तान पे पुरानी गजल, सुबह ऑफिस जाते हुए सॉफ्ट मेलोडीज, लंच टाइम में पाकिस्तानी फिल्मी गाने, ड्राइव टाइम में तेज तेज गाने, और फिर रात को पुरसुकून गजल और गीत, इसका अपना ही मजा. आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा वक्त पसंद है FM 100 पाकिस्तान सुनने में, सुबह का, दोपहर का, शाम का या रात का. ये हमें जरूर बताइए. FM 100 पाकिस्तान पे आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज. एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे और आएंगे वापस.

0: FM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365. Music.

ऑल राइट आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बारी है आपके मैसेजेस की और यकीनन आपके मैसेजेस हम जरूर पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे क्योंकि बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी डेडिकेशन के साथ आप लोग मैसेजेस करते हैं। तो मूव करते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। हमें नदीम ने मैसेज किया है, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम असलाम, शो इज गुड, हैप्पी संडे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपके मैसेज करने का, फरमाइश नोट कर ली हमने। इसके अलावा अकरम हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, फरमाइश नोट कर ली है। आसमा फरीद हमारे साथ हैं, सलाम कह रही हैं, वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सोफिया हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम कह रही हैं, पहली मरतबा सुन रही हैं, वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश नोट कर ली है। मजर हमें सुन रहे हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम असलाम, पहली मरतबा सुन रहे हैं, मुल्तान से सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। इसके अलावा मन्नान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। रबिया हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। इसके अलावा शम्स हमें सुन रहे हैं, शम्स बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, मेरा नाम महफूज है, हर संडे दोपहर 3 से 5 शो करता हूं। इसके अलावा दानिश अली हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच दानिश, वालेकुम असलाम, आपकी भी फरमाइश नोट कर ली है। रेहाना हमें सुन रही है, रेहाना बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है। अहमद अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, हैप्पी संडे, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। रहीम हमें सुन रहे हैं, रहीम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम। उजमा सुन रही है पहली मरतबा, खुशामदीद, वालेकुम असलाम, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। इसके अलावा शिफा हमें सुन रही है, शिफा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और हारिस अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। और भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं लेकिन एक साथ अभी नहीं पढ़ूंगा, धीमे धीमे पढ़ूंगा ताकि मुझे मैसेजेस पढ़ने में भी मजा है और आपके मैसेजेस सुनने में भी मजा है। तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए जो मैं पेश करने लगा हूं आप ही की फरमाइश पर, सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti. Musti. Musti.
2: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है. इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार, खूबसूरत, हसीन, दिलकश, दिल नशीन आप सब बनाते हैं. आपके मैसेजेस बनाते हैं, आपकी फरमाइशें बनाती हैं, और कुछ ना सही तो आप खामोशी से सुनकर हमारे साइलेंट लिसनर्स हमारे प्रोग्राम को हसीन तरीन बना देते हैं. प्रोग्राम में 400 चांद लगा देते हैं. आप लोग बड़े स्वीट हैं, बड़े जबरदस्त हैं. आप हमें कराची में सुन रहे हैं 100 की फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो सेट्स पे. इसके साथ साथ आप हमें कराची के अलावा भी सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर भी सुन रहे हैं. fm100pakistan.com पे सुन रहे हैं. अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं fm100pakistan, और बआसानी दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं. अपने वक्त के मुताबिक हमें सुन सकते हैं. यह है प्रोग्राम का खासा, म्यूजिक मस्ती का खासा. हम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके लिए फास्ट ट्रैक्स पेश करेंगे और 4 से 5 सॉफ्ट मेलोडीज की फरमाइश करेंगे आप. हम वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे. तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ Mehfooz और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है जो आपके संडे को बना दे फंडे. प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का एक और जबरदस्त गाना. सुनते हैं और वापस आते हैं.

जी मेरे दोस्तों आ चुके वापस, आप सुन रहे हैं एफएम 100 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं महफूज। मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों की सेहत जरूर पूछता हूं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक ठाक हैं, और हमेशा कहता हूं कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए आप सबको। अपनी सेहत का ख्याल रखना रोज के छोटे फैसलों का नाम है, कोई मुश्किल रूटीन नहीं है। आपने खाने पीने में एहतियात रखनी है, मुतवाजन गजा लेनी है, अपने मील में सब्जी लेना है, दाल लेना है या अंडा लेना है, चिकन भी ले सकते हैं आप, रोटी या चावल भी ले सकते हैं, लेकिन तला हुआ और मीठा आपने रोज नहीं खाना, कभी कभी आपने खाना है। पानी का इंटेक बहुत रखना है, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास आपने पानी पीना है, और गर्मी में इससे भी ज्यादा पीना है। चाय या कोल्ड ड्रिंक पीने से पानी पूरा नहीं होता। इसके अलावा आपने नमक और चीनी कम करनी है, बाहर के खाने से परहेज करना है क्योंकि बाहर के खाने में ये दोनों ज्यादा होते हैं, चाहे नमक या चीनी। आपने नींद लेनी है, पुरसुकून नींद लेनी है, यानी रोजाना 7 से 8 घंटा एक ही टाइम पर सोना है और उठने की कोशिश करनी है। स्ट्रेस कम करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है, अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए बंद कर देना है, आप देखिएगा आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा आपने अपने जिस्म को हरकत देनी है, रोज 30 मिनट वॉक करनी है तेज कदम के साथ, दिल और वजन दोनों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बैठने से बचना है, हर एक घंटे या 2 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट आप खड़े हो जाएं, कमर को सीधा करें, ये बहुत जरूरी है। सफाई का ख्याल रखिए, अपना हाथ धोएं, ब्रश करें, छोटी छोटी चीजें जो हैं बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। साल में एक मरतबा अपना चेकअप जरूर कराएं, ब्लड प्रेशर चेक करें, शुगर चेक करें, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, और खासतौर पर 40 के बाद तो जरूर। इसके साथ साथ आपने बुरी आदतों से बचना है और सबको तंबीह भी करनी है, जैसे सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, नसवार नहीं खाना है, इन तमाम चीजों से आपने परहेज करना है। अगर इनमें से कोई भी बुरी आदत है आप में तो प्लीज इसे छोड़ दीजिए और डॉक्टर से मदद लेना सबसे अच्छा कदम है। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें क्योंकि सेहत से बड़ा खजाना कोई नहीं। सेहत की अहमियत उनसे पूछिए कि जो सेहतमंद नहीं है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी फरमाइश बता सकते हैं और दिल की बात कर सकते हैं। एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए पेश करने लगे हैं, सुनिए और वापस आइए।

0: You are listening to Music Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, एक बार फिर वापस आ चुके हैं. मुझे कहते हैं महफूज और आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती. और बारी है आपके मैसेजेस की जो मुझ तक पहुंच चुके हैं. बीना हमें मैसेज कर रही हैं, सलाम कह रही हैं, हैप्पी संडे आपने कहा है. आपने कहा है माशाल्लाह अच्छी आवाज है, बहुत शुक्रिया बीना आपका, थैंक यू सो मच. कामरान मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की कोशिश करेंगे. वफा हमें मैसेज कर रही है, वफा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, फरमाइश नोट कर ली है. वहीद अली हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए वहीद अली, आपकी भी फरमाइश नोट कर ली है. सुमेरा में सुन रही है, सुमेरा वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है. इकबाल हमें सुन रहे हैं, इकबाल पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे, वालेकुम असलाम, फरमाइश नोट कर ली है. कलीमुल्ला हमें सुन रहे हैं, कलीमुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपने कहा वेरी नाइस शो, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच. शगुफ्ता हमें सुन रही है, शगुफ्ता बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा वाह क्या बात है, जबरदस्त शो, बहुत बहुत शुक्रिया. फरत हमें सुन रही है, फरत बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे. मोहम्मद इमरान हमें सुन रहे हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फरमाइश नोट कर ली है. बशीर अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, शुक्रिया बशीर अहमद, आपने कहा माशाल्लाह बेहतरीन. इसके अलावा गुलफशा हमें सुन रही है, सलाम कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम. फरीद हमें सुन रहे हैं, फरीद वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. इसके अलावा जहरा हमें सुन रही है, जहरा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मैन, वालेकुम असलाम. तो दोस्तों, आप सबके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं, मैंने पढ़ दिए. मजीद मैसेजेस करने के लिए अपने राइट मैसेज में जाइए, कैश आई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ Mehfooz पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है. सुनाते हैं आपकी पसंद का एक और खूबसूरत सा गाना, सुनिए और वापस आइए.

0: You are listening to Music Masti.
1: ओके जी, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया और फास्ट ट्रैक्स का जो सेगमेंट है, देखिए कितनी तेजी से गुजर गया। और आखिरी का तेज गाना हम लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप लोग हमें बताइए कि आज किस किस की बर्थडे है। अगर आपकी आज बर्थडे है, अगर आपकी आज बर्थडे है, अगर आपकी आज बर्थडे है, हाँ जी, मुझे सुन रहे हैं सारे के सारे, अगर आपकी बर्थडे है तो आप मुझे बताइए और मैं आपको विश करूंगा और आपको कहूंगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सब जी हजारों साल और साल के दिन पूरे गिन के हो 50,000। या कोई स्पेशल इवेंट है तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पूछी है। बहुत ही आसान सा तरीकेकार है, जहां facebook.com लिखते हैं वहां facebook.com के बाद / लगाइए, आरजे महफूज लिखिए, मेरी प्रोफाइल पे डायरेक्ट आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर लॉग इन है तो सर्च कीजिए आरजे महफूज, क्लिक कीजिए, मेरी प्रोफाइल पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे, आप मुझे ऐड कर सकते हैं, ये रियल आईडी है। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है आरजे महफूज, RJMAHFWZ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीकाकार है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए फन विद महफूज, FUNWITHMAHFWZ। सर्च कीजिए और आप आ जाइए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नई चीजों की नोटिफिकेशन आती रहे। तो इस तरह से आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3666 रवाना कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है। आखिरी का तेज गाना आपके हम पेश करते हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद हम आएंगे सॉफ्ट मेलोडीज के साथ। हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाएगा, हमारी म्यूजिक चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं और आप वही रहेंगे। सुनते हैं आखिरी का तेज गाना और आते हैं वापस।

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान. दिस इज FM 100.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती मस्ती.

0: You are listening to Music Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. आप मेरा शो सुन रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. फैमिली के साथ साथ अपने दूसरे रिश्तेदारों की भी बासपुरस करनी चाहिए, अपने दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखना चाहिए. अगर आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है तो बिल्कुल आप उसकी मदद करें. सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता. बातें बनाना बहुत आसान होता है, उसमें वक्त नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, जिम्मेदारी भी नहीं आती. और कोई भी कह देता है फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा या मैं हूं ना, और मदद करना एक प्रॉपर अमल है. उसमें अपना वक्त देना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, कभी कभी अपना आराम कुर्बान करना पड़ता है. बात करने वाला सिर्फ सुनाता है और मदद करने वाला साथ खड़ा होता है. लोग अक्सर बातों से तसल्ली देना चाहते हैं, नीयत बुरी नहीं होती है, लेकिन जिसको जरूरत हो उसको तसल्ली से ज्यादा सहारा चाहिए होता है. देखिए ना दोस्तों, कि जब वक्त अच्छा होता है तो बातें बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, महफिल जमी रहती है, मशवरे भी मिलते रहते हैं. लेकिन जब वक्त मुश्किल आ जाता है, जब असल में किसी के कांधे की जरूरत होती है, तब भीड़ छट जाती है. तब पता चलता है कौन सिर्फ बोल रहा है और कौन सच में साथ देता है. इसलिए कहते हैं कि बोलने वाले हजार मिलेंगे, निभाने वाले गिने चुने. तो आप बोलने वाले ना बने, आप करने वाले बने. आप सिर्फ तसल्ली देने वाले ना बने, आप सहारा देने वाले बने. अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा. तो मेरे दोस्तों, देखिए अपने आसपास कि अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो जरूर उसकी मदद करें. फिलहाल अगर आप मुझसे फरमाइश करना चाहते हैं, कोई बेहतरीन सी प्यारी सी बात करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3666 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है. एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे और आएंगे वापस.

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: ऑल राइट, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. बड़ी जबरदस्त सी म्यूजिक आप फरमाइश कर रहे हैं, मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं. मुझे भी सुनने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है. अच्छा जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पूछी है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है. जहां facebook.com लिखते हैं, वहां facebook.com के बाद /लगाइए, आरजे महफूज लिखिए, मेरी प्रोफाइल पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं. या फिर आप फेसबुक लॉग इन करने के बाद आरजे महफूज सर्च कीजिए, आप मेरी प्रोफाइल पे आ सकते हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है आरजे महफूज, आरजे MAHFWZ. इसके साथ साथ अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीकाकार है. सर्च कीजिए फन विथ महफूज, FUNWITH MAHFWZ. फन विथ महफूज सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी. आप लाइक कीजिए वीडियोस और शेयर कीजिए. अभी के लिए आप अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए. और आप हमें सुन रहे हैं कराची में 100 की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट्स पर. इसके साथ साथ आप हमें पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर सुन रहे हैं वेबसाइट पे fm100pakistan.com पर. या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो fm100pakistan एप्लीकेशन डाउनलोड करके बआसानी आप हमें सुन सकते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आपने की है और मैं बेताब हूं इसे प्ले करने के लिए. सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना.

0: 247-365. FM 247-365. You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti. Musti. Musti.
2: All right, welcome back. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों, आप अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालते हैं, म्यूजिक मस्ती सुनते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अपने लिए आपको वक्त निकालना चाहिए। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इस पर पूरी जिंदगी का बैलेंस है। आप यकीन मानिए, हम दिन भर सबके लिए जीते हैं, काम, घर, जिम्मेदारियां, फोन, मैसेजेस। अगर रोज अपने लिए थोड़ा वक्त ना निकालें तो अंदर ही अंदर खाली होना शुरू हो जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, थकान होने लगती है और बेजारी से आने लगती है। अपने लिए वक्त निकालना मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है, मतलब है अपने आप को चार्ज करना ताकि हम बाकियों के लिए बेहतर हो सकें। जो वक्त आप अपने लिए निकाल रहे हैं उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वॉक का टाइम फिक्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं सुबह फजर के बाद या रात सोने से पहले। फोन को साइड पर रख के, साइलेंट पर रखकर बस अपने लिए जिएं, बस अपने लिए वक्त गुजारें। कभी छत पर चले जाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें। कराची में शाम की हवा में 15 मिनट वॉक भी दिमाग को फ्रेश कर देता है। कोई ऐसी चीज जो आपको सुकून दे, चाय पीना, कोई पुरानी गजल सुनना, किताब के 2 सफ़े पढ़ना या बस कुछ ना करना, जो भी आपको सुकून दे वो आप आधे घंटे के लिए जरूर करें ताकि आपका दिल दिमाग फ्रेश हो जाए। और जब रात को सोने लगें तो अपने रब का शुक्र जरूर अदा करें कि अल्लाह, आपका शुक्र है कि आपने दिन बहुत ही हसीन गुजारा, मेरे साथ कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो मेरे लिए नुकसानदेह है। जब आप शुक्र करके सोते हैं तो बड़ी मीठी नींद आती है और अल्लाह भी बहुत खुश होता है। थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए ताकि आप अपने आप को चार्ज कर सकें। तो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे लिए भी वक्त निकालते हैं। क्या बात है जी, कमाल के लोग हैं। म्यूजिक मस्ती 2 घंटे मेरे साथ सुनते हैं, पसंद करते हैं, साथ साथ फरमाइश भी करते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए मैं पेश करने लगा हूं, आपके लिए, बिल्कुल खास आपके लिए।

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Masti.
1: Masti. Masti.
2: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. और वक्त तेजी से गुजर रहा है, आपके मैसेजेस भी बहुत तेजी से मुझ तक पहुंच रहे हैं. यकीनन आपके मैसेजेस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके मैसेजेस मैं पढ़ने लगा हूं. ताहिरा हमें मैसेज करी हैं, सलाम कह रही हैं. वालेकुम असलाम, शुक्रिया आपने हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ साथ आपकी फरमाइश भी मैंने नोट कर ली है और पूरी करेंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा निगार हमें मैसेज करी हैं, सलाम कह रही हैं. वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. आसमा फरीद हमारे साथ मौजूद हैं और आप तारीफ कर रही हैं प्रोग्राम की, बहुत बहुत शुक्रिया. इनाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनाम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. वालेकुम असलाम, फरमाइश नोट कर ली है. सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, सादिक बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, फरमाइश नोट कर ली है. असद अली हमारे साथ हैं, सलाम कह रहे हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं. वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. अफशां हमें सुन रही हैं, अफशां बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. वालेकुम असलाम. मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए क्या हाल चाल है. उरूज हमें सुन रही है, उरूज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम. उरूसा खान हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा समीना हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. तो मेरे दोस्तों, ये आपके मैसेजेस मैंने पढ़ दिए हैं. यकीनन आप जब मुझे मैसेजेस करते हैं तो आप बेताब होते हैं कि आप अपना नाम सुन लें, मैं ये बता दूं कि आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं रिसीविंग दे दूं. तो जितने बेताब आप होते हैं अपना नाम सुनने के लिए, मैं भी उतना ही बेताब होता हूं आपका नाम पढ़ने के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपका मैसेज और आपकी फरमाइश मुझ तक पहुंच चुकी है. तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मजीद मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए थोड़ा सा तहमुल मिजाजी का मुजाहरा किया करें. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज आपको कौन सा गाना मेरे प्रोग्राम में सुनना है, कौन सी सॉफ्ट मेलोडीज आपने एंजॉय करनी है. तो सुनते हैं आप ही की पसंद का एक और खूबसूरत सा गाना और वापस आते हैं.

0: 247-365. FM 247-365.
1: You are listening.
0: Music.
1: Masti.
2: ओके जी, आ चुके हैं वापस। वक्त खत्म हो चुका है। ये वो वक्त है कि हम आपसे अलविदा कहते हैं, हम आपसे खुदाफिस कहते हैं और अच्छा सा गाना आपके लिए छोड़ के जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम सुना। मैसेजेस करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, फेसबुक पे मैसेजेस करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और खामोशी से सुनने वालों का तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग खामोशी से हमें सुन रहे होते हैं, बताते भी नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है। हमारे दिल के तार आपके दिल के तार से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि आप हमें सुन रहे हैं। बहरहाल आप साइलेंट लिसनर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने फरमाइशें की, आप सबने ढेर सारी बातें की, विशेज हैं और डेडिकेशंस हैं। तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम और खास आपका अपना प्रोग्राम कि जिसे म्यूजिक मस्ती कहते हैं, हमेशा आप खूबसूरत बना देते हैं और आज भी आपने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना दिया। तो इजाजत का वक्त है, जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं महफूज करें एफएम 100 पाकिस्तान को। रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबानों के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे अगले इतवार दोपहर 3 बजे। जाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: RGFM Bank Sabanma.
1: This program is brought to you by
0: Bebak. RGFM Bank Sabanma.
1: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: पानी नो परेशानी।
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
0: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
0: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पेपाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL
3: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account.
0: This program is brought to you by
4: Deepak. Aaj hi apne bank se banwaye.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाए। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपाक है
3: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपाक है
6: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: पेपाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।

0: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye. And Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
2: 100 FM.
3: पेपा कार्ड है
4: तो फायदा है.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: 100 FM HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट।

0: Fresh FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपाक है
6: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपाक है
7: इन स्टोर ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
9: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 247 365

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

Acha. Now we come from run things on the road. See?

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, न्यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Back to back music and the hot

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: your location for maximum music.
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: We'll be right back after this commercial break. Break. Break.
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANF वाज़े मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है। मोहल्लों में, सड़कों पर

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM 247 365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

सोनिया मस रुत बसंती अंदर माही जलवा आन दिखाया बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त ओ ना डरदा दोजख कोलों ना लालच जन्नत दा रखे।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.